0: लाग मल व्यवस्थापन चाहपात नियन्त्रण तथा रोग किरा व्यवस्थापन विशेष ध्यान दिए पर्न कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिनमा जनाइल बा। एजोलाह हरियो मलको रूपमा प्रयोग गरी धान खेतीमा हरियो मलको रूपमा तयार मिलक एजोला प्रति कठा 20 किलो या प्रति रोपनी 30 किलो का दरले प्रयोग गर सकि। एजोला वृद्धि करकला कम्तीमा 10 दिनसम्म खेतोमा 5-10 सेन्टिमिटर गहिराईसम्म पानी धर्ल रही पानी सँग एजोला पुगेन जैनी देखला कन ध्यान दि। एजोला हन धानका पहिला निकै ना प्यालामा न माटीमा मजा चेन मिलाए कृषि विज्ञको सुझाव पातिन मल व्यवस्थापनमा फेरि ध्यान दि। धान लगेलक 20-25 दिनसम्म ऐना बुट्टा हन समयमा न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद सिफारिश गर्लक माटा अनुसार युरिया टप गर सिक्बी। युरिया विकल्पका रूपमा नानो छोल युरिया 4 मिलिलिटर प्रति मिलिलिटर पानीमा मिलाकन पुरा भिज्नाकै कह छिटो सिक्बी। टप्रियस गर सिक्लक पाचक कम्तीमा 24 घण्टासम्म खेतोमा पानी बह नाडि। झारपात नियन्त्रण गर्न बेला धान छिटलक 15-25 दिनभित्र झारपात व्यवस्थापन विशेष ध्यान दिए पर बिस्माई रिबेक सोडियम 10% एमसी 25 लिटर पानीमा न 12 मिलिलिटरका दरले कन प्रति रोपनी वा 70 लिटर पानीमा न 8 मिलिलिटरका दरले का प्रति कठा प्रयोग गर सेक्ना बुलेटिन जनाइल बा। उसैका औषधि प्रयोग गरेर खेतोमा छिटछिटे पानी हुइलक अवस्थामा फ्ल्याट फ्यान नोजल प्रयोग गर सुझाव देखिल बा। लाइनमा लगिलक खानामा निकाय बेर कोनो विदर का प्रयोग कर सकता है। धानमा रोग र जोखिम बढ्न सक्न अभिलक कोर्सिन निगरानी गर परत। धान लगा सेक्लक 2-3 हप्ता पाछ खेतोमा लगातार पानी जम्ती रह बेर फेटी कुन्हा रोग लाग सक्न अभिलक कोर्सिन नियमित अवलोकन गर परत। रोगी बिदबुरान खार्कन नष्ट गर्न हो अर्को फुलक ठाउँमा जमलक पानी हान निकालेर सुझाव देखेल बा। उसैका बुलेटिन आवश्यक अवस्थामा बेबिस्टिन 2 ग्राम मिली प्रति पानीमा मिलाकन 8-10 दिनका फरकमा 2-3 खेरा वा भिज्ना गरी छिटो परत। गबारो ओ पात बिरुवा किरा कसीका नियन्त्रण गर्न धान खेतीमा गबारो किराका कारण बुवाक मुना समस्या आइसक्ना बिलक पर्सिन नियमित अनुगमन गर पर। खेतोमा 5% मृत बुट्टा वा प्रति किराका फुलक एकठो झुप्पा अथवा प्रति मिलिमिटर एकठो वयस्क किरा देखपरलक पाछक व्यवस्थापनका उपाय अप्नाइन बुलेटिन सुझाव दिएल बा। पातका टुप्पमा रलक अण्डा फेन अवलोकन कैकन नष्ट गर प्रगेल बा। धानमा पात बिरुवा किराका प्रकोप बिलक किराका लाभा बिलक पटिया हन चिर कठिन नष्ट गर सेक्जाइ। धान हन कटाह लट्ठी लेका हो डौरी लेका फेन लाभा हन नष्ट गर सेक्जाइ। प्रकोप ढेर बिलक मात्रामा सिफारिस गर्गेलक विषादी प्रयोग गर परत। प्रत्येक फेदरी डडुवा अर्थात सिट ब्लाइट मसिन जोगाइ सेक्जाइ। धान बाली मना प्रत्येक फेद मना डडुवा अर्थात सिट ब्लाइट रोग जोखिम देख पर्लसे सिफारिस गर्गेलक मात्रामा नाइट्रोजन सँग फस्फोरस वा पोटास मल प्रयोग गर सुझाव देखेल बा। रोगका प्रकोप भर्लसे एलिडाइमाइसिन 2 मिलिलिटर प्रति लिटर पानी मिलाकन सक्खु बोट मुनान भिज्नाकै 10 दिनका फरकमा 3-4 फेरा छिटो सेक्जाइ। अब धान बालीमा न किसान हुनका लाग मुख्य सन्देश। अब धान बालीमा न पानी जम्न अवस्था झारपात हो रोग किराका नियमित अनुगमन गर पर्न सबसे महत्वपूर्ण बाध्य मल तथा विषादी प्रयोग गरे कृषि प्राविधिक सल्लाह हो सम्बन्धित बालीका लाग सिफारिस गरेलक मात्र पालना गर पर्न र कुछ दिन यहाँ लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा साताका सुरुवातमा कुछ स्थानमा न मध्यम तथा अन्त्यमा मध्यम वर्षा हुन सम्भावना बा। साताका सुरुवात मध्यममा 1-2 स्थानमा न भारी वर्षा तथा मेघगर्जन सत्याङ्क सम्भावना रहे सतर्क रह सुझाव दिएल बा। किसानका धान खेतमा न एजोला प्रयोग उचित पानी व्यवस्थापन तथा गोडमेलमा न ध्यान दिनासँग धानक रोग किराका नियमित अनुगमन तथा कृषि अनुसन्धान परिषद सुझाव दिएल बा। मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क 11:55 हो। कृषि तथा पशुपन्छी जिज्ञासाका लागि 11:35 सम्पर्क सर्कन अपनाउक र बुलेटिनके बारेमा जानकारी लिन सक्ने बाटो।
1: कृषि औ पशुपालन सम्बन्धी जिज्ञासा केलक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदकै पैसा नै लग्न नम्बर 11:35

0: म हरेक सोमबार सन्ध्या के 5 बजे से 7 बजे सम्पूर्ण कर सिक जाए।
1: अब हाम्रा सुन्टीबाटी कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रमका पुछारमा आशिकली आप पाला हिल्बा हमार प्रश्न अपना जवाब प्रश्न असिम्बा
2: रासायनिक युरिया मल के सट्टा मन कौन मल प्रयोग कर सिक जाए प्रश्न फेक फ्यारा युरिया मल के सट्टा मन कौन मल प्रयोग कर सिक जाए
1: एसएमएस मसिना उत्तर पठाकर सहभागी बन सकती यी प्रश्न के उत्तर अपना जन्मवादी कला से 98583961 आपन नाव ठेगाना सहित एक हप्ता भीतर एसएमएस मसिन उत्तर पठाकर सहभागी बन सकी सही उत्तर पठाइल फुकन से एक जहन गोला पठा से विजेता छान का कार्यक्रम के तरफ से एक छोटी सर पौधा देने वाली
2: आप पालाबा गैलक कार्यक्रम मन हाम्रा पुछलक प्रश्न सही जवाब दिना विषयमा हाम्रा पुछल प्रश्न रह राष्ट्रिय धान दिवस कहिया मना जाए याकर सही उत्तर रह असार 15 गते यी प्रश्नक उत्तर ठ्यार जनसंग्रहण लिखन पठाइल रह यी मध्ये मचेन एकजन हाम्रा गोला प्रथा मचेन विजेता घोषणा करल बाटी उहाँ हुई त ठाकुर बाबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का दिल्लीराज उपाध्याय उहाँ चाहिँ गोला प्रथा मसे विजेता भए सफल हिलबाट दिल्लीराज उपाध्याय हन हार्दिक बधाईबा पुरस्कार केला अपना एक अफर भित्तर अपन परिचय खुल्ना कार्ड लेखन टाइगर एफएम का कार्यालय मना सम्पर्क गर सिक्ने बाटी
0: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सकल्पा छ अपन मनमा लागल विचार और कृषि खेती के विषय में कोनो प्रश्न और जिज्ञासा मिल कले से अपने उग्र अपन फोन मसे कह सिक्ने बाटी है और एसएमएस ईमेल मसे फेर लेखी सिक्ने बाटी है अपन जवाब में विचार और प्रश्न धरकला कृषि अनुसंधान परिषद के पैसा निलग्न फोन नंबर 1135 लेलक निर्देशन के आधार में रेकर्ड कर सिक्ने बाटी है पुस्तक रेडियो टाइगर के संपर्क नंबर 0084401888 और मोबाइल नंबर 98580309161 में फोन कई रेकर्ड कराए और लिखाए फिर सिक्ने बाटी है पुस्तक रेडियो टाइगर एफएम @gmail.com में फिर अपन जिज्ञासा पठाई सिक्ने बाटी
1: लिटा रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भाग में नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि मौसम सलाह बुलेटिन हो कृषि विज्ञ से लिखल सलाह सुझाव ऐना हप्ता में अपनाई से एक जिना कृषि संबंधी थ्योर जानकारी संग और मेरमेरी गतिविधि फैले का ऐना भाग मन ध्यान होने नहीं बा कार्यक्रम का ऐना भाग के न सुनती रवि कार्यक्रम सुन के सुझाव सलाह फेना लिख कर पठिने बाटी कना आशा करती राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संघ संघरिया आरटीओ मैतिकाराम फिना विदा विटी राम राम नमस्कार।

एग्जैक्टली 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ आना था वो आया नहीं, जो किसका है पता नहीं बन गया। Excuse me.

0: अफिसको ड्रेस, केटाकेटीका लागि स्कूल क्याम्पसको ड्रेस अनि बुढीका लागि ब्लाउजको कपडा, साडी अनि धोती किन्न जानुपर्ने।
1: त्यो सँगै सिरक, डसना अनि सिरानी पनि बनाउन छ। यी सबै सेवा सुविधा भएको पसल कुन छ खै बजारमा?
2: ल, यतिको लागि पनि चिन्ता किन, भुरी गाउँ बजारमा रुक्मणी वस्त्रालय छँदै छ नि।
3: साथै हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी थान एवं रेडिमेड कपडामा सर्टिङ, सुटिङ, सुट पिस, कुर्ता सुरुवाल, जरिवाल, सारी, ब्लाउजको कपडा सँगै कन्ना, सिरक, डसना, सिरानी पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर बिन्तीराम राजखन, रुक्मिणी वस्त्रालय, भुरीगाउँ बजार, बर्दिया, देवीराम चौकदेखि त्रिभुवन स्कूल जाने बाटो। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9861806993।
4: जीत पुरवाली, यह साल तो निश्चिंत हो गए।
5: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
4: हाँ, तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
6: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
7: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
8: होइन दिदी, किन निराश भएर बस्नु भएको?
9: छोराको बिहेको दिन पनि आइसक्यो। आकर्षक गरगहना कुन पसलबाट ल्याउने होला भनेर सोचिरहेछु नि बहिनी।
8: त्यति धेरै केही सोच्नै पर्दैन नि दिदी, भुरीगाउँ बजारमा रहेको नरेश सुनसादी पसलमा जानुहोस् न, त्यहाँ त हामीले सोचे भन्दा पनि राम्रो र आकर्षक गरगहना पाइन्छ नि।
0: हाम्रा सेवाहरू, हामी कहाँ नम्बर एक सुनचाँदीका गरगहनाहरूमा इन्डियन मंगलसूत्र, हारमाला, छड्के तिलहरी, फुली जुलीका साथै विभिन्न डिजाइनका आकर्षक गरगहनाहरू बनाइन्छ।
3: नरेश सुनचाँदी पसलको शाखा अब बगनाहा बजारमा पनि। प्रोप्राइटर नरेश सुनार, नरेश सुनचाँदी पसल, भुरीगाउँ बजार, बर्दिया। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848054304।
10: केपी पोली क्लिनिक भुरी गाउँमा काठमाडौँबाट डाक्टर आउने बारे सूचना।
11: यी भाद्र 5 गते शुक्रबारको दिन
10: पेट, छाती, सुगर प्रेसर र थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रौनिया एवं पाइल, फिसर, फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाहद्वारा बिरामी जाँच, उपचार तथा अपरेशन हुने जानकारी गराउँदछौ। उक्त दिन दम रोगीहरूको लागि फोक्सो सम्बन्धी विशेष जाँच, पीएफटी समेत गरिन्छ। स्थान केपी पोली क्लिनिक, भुरीगाउँ, बर्दिया।
12: यो हो तपाईको आफ्नै रेडियो, रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए खास बात खुदा में है।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।